Kutsa.

0: Shake. Polemon Sabata. Be Lincoln. Monza.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कौन सी

corazón que hacia ti. Va a te conciba.

क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है ना, बाप दादा मुस्कुराते हैं जब कह रहे हो मेरे संस्कार। संस्कार मेरा

मेरा नहीं कह सकते। जीवन के संस्कार शूद्र जीवन के संस्कार।

primeira.

Kiss me.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Deep.

0: लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना, अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्कर लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी कभी लिफ्ता बन जाए, ये हो ये करे ये मदद दे ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। ये लेवतापन दातापन नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अब ये दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए। एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं। ये दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाए। जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। जैसे अभी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गई है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारिया मन की शांति, मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही है। ये धीरे धीरे अभी कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इसका साधन अच्छा है। धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा है। ऐसे ये दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाए। एक तो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होके कहे कि ये बात समझने की है, तो धीरे धीरे ये बात फैलती जाए। भाषण तो अभी कहते ही है कि ब्रह्मा कुमारियों का भाषण पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। सुनने आते हैं, समझने लगे, लेकिन मुख्य बात अभी इसका आवाज होना चाहिए। ये तो विशेष बातें हैं। इससे ये सिद्ध हो सकते हैं कि इनको ये सिखाने वाला कौन। तो ऐसा पुरुषार्थ करो कोई अथॉरिटी है जो इन्हों को सिखाने वाली।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको लेना दे सकते। हमारा बाप आया, आपको मालूम पड़ा हमारा बाप है, जो सब किसी को भी बेच के कम से कम पता तो पड़े कि हम सब का बाप आया है। चाहे अचानक आना है, पता के नहीं आएगा। अपना चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य देखो।
1: चाहे किसी भी रीति से
0: अपना फर्ज पूरा करो, चाहे किसी को भी भेजो, लेकिन ओलेना नहीं रह जाए हमको तो पता ही नहीं पड़ा किस एरिया के तो नजदीक होगा ना। क्यों अचानक

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आराम का अर्थ है आराम फिर करना, आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना, वो आराम नहीं करना धनलपन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहां है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ इसीलिए उठाते हैं, अभी जैसे एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हासिल हो जाएगा, समस्या खत्म। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाए, मास्टर सर्वशक्तिवान अपना टाइटल हर समय याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य विश्व कल्याणकारी, तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगे। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, आर्डर करो, हर शक्ति को समय पर आर्डर करो, वैसे शक्तियां धारण करते भी हो है भी, लेकिन सब कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आते। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इस कर्म इंद्रियों को आर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को आर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो, समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर Yes, sir.

बच्चों के

Baby. हर एक बच्चे के छत्र छाया बन

Shit.

Suddenly,

0: Adipan. Warte. Coba baca.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक समय आना है। ऐसे समय पर आप मूर्ति कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी जैसे आप ही अनुभव करती है ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए। अचानक ही हुए ना, सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, सोचा था। अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे 2000 तो सोचा था, वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी, किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेंगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुना ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या, इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी नहीं बनना किसी भी बात में, चार सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो, जितने चाहिए जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी से आपके चेहरे पर फियरत की समापति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और जलन में आनी चाहिए। ये माया के जो शब्द है ना, बाप दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छे कर रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन अभी जैसे शरों द्वारा वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई, ऐसे ही अभी समय जैसे भाषणों का अभ्यास करते करते होशियार हो गए होता, ऐसे अभी चेहरे और चलन से खुशी का वरदान दो, ये अभ्यास करो, क्योंकि समय कम मिलेगा। सब अचानक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सबकी दादी निमित बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित पालना के ऑटोमेटिक याद निकलती। तो जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखे। सबसे बड़ा पेपर दादी ने अव्यक्त बाप होने की टाइम दिया। ऐसे वायुमंडल अचानक और इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित्त तो बने। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं रही। और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया, अलबेला है छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी।
2: भाइयों को बुलाया,
1: दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ, जो लक्ष्य रखे दादी चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान पास ना दे। ग्रुप चाहिए एक नहीं, एक दो के साथी बन, ऐसा वर्तक के स्वरूप देख, फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक बाप दादा को अल्लापेलापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो, दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, और दिल खुश बड़ी दिल होती है। दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना। उमंग उत्साह में सदा उड़ती।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, चित्रों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भगत बना रहे योग दिया हुआ सुख और शांति।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा द्वारा सभी को अनुभव है, जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा वाक कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, उसकी प्राप्ति आत्मक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वो से

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरा बाबा कहेंगे तो शक्ति हाजिर दिल से। ऐसे ही मेरा बाबा ने दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएंगी। वो कौन सी शक्ति? बड़ी वर्तन की शक्ति। बड़ी वर्तन की शक्ति में विशेष चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाए, क्योंकि ये अपोजिशन आएगी। लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आप सहज सफलता दिलाएंगे। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से मुश्किल बात आए। वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान उसके आगे मुश्किल किया, लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक या अंधकार हो जाता है अगर कोई गलती से भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो। मैं चले जाता। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। सहज विधि कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। अपन ने मास्टर सर्वशक्ति
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की सभापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को सभापत कर सदा समृद्ध पर समृद्ध बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनो, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापति दिवस बनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अब इस समापति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समापति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, स्वप्न में भी नहीं है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, पाए का हाथ तो बहुत ईजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रही है वो हाथ उठाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुस्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो भ्रमणों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, मिनट करो, पांच मिनट की भी छुट्टी, पांच तक भी छुट्टी, लेकिन अगर कोई भी समय दस मिनट हो तो अच्छा, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किराए देने पड़ेंगे। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है ना, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो दस मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो पांच मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम पांच मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा। स्पष्ट हुआ स्पष्ट, क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने निशानी है हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अपने भाई बहनों के ऊपर रैप दिल बनो और रैप दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव सुदैव किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको रहम है उस आत्मा के तो आपको उसके प्रति कभी भी कृष्णा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं है। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता अंदर लगा हुआ है किसी आत्मा के प्रति और समझते हैं रहम पर रहा।

peluang, matlab kade, secara ni, koi lagau ni, koi tepat ni. Yeah.

可以不接心。那是那个人的感觉。我们说的都我的感觉的不接人不得我的故事呢故事比你也是了不得。लेकिन जेकर नेर स्वार्थ रहम है लगाव मुक्त रहम है कोई अलबकल की कारण तो रहम नहीं है फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना बहुत अच्छा है ना इसीलिए थोड़ा छुट्टी नहीं है थोड़े की छुट्टी नहीं है बोले

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हिम्मत कम तो नहीं होती, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी।

0: अच्छा है कुछ सोचना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खुशखबरी

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: नहीं हो, ये हो नहीं सकता।

0: बांधने की रस्सी है, क्या है? दिल का प्यार। तो अभी चेक करो कि दिल का प्यार है, खुदा को दोस्त बने। दोस्त किस लिए बनाते? पाप से भी दोस्त से ज्यादा प्यार होता। तो खुदा दोस्त बने ना। कोई भी बात आवे, बाबा आप समझ, छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो, तो पाप ले लेना। प्यार के रस्सी से ऐसा बांध के रखो जो हिल नहीं सके। समझा? सभी ने समझा?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियां आ जाए।

にそっとした。国家便以上Kain pa chicken.

Good night.

snake.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे जिम्मेवारी

紹介。

समय

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपने बड़ी दादी को देखना, कितने न्यारी और Yeah.

सारे लाइफ में हद तक का मेरा पन, हद तक का मैं पन से न्यारी, रही है उसकी रिजल्ट। बीमारी कितनी भी है एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं। क्यों? निशानी देख रहे तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? Yeah.

0: Seymour Magazine.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों बाप से प्यार तो कभी अपने को निराकार बाप समान निराकारी
2: हो सकता है।

0: आप सबका भी यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दें, मुक्त करें। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते, तो इन्हों को मुक्त करो। क्योंकि पाप आया है ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना। उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए ये ड्रिल करो, 24 वाली, 24 घंटे है, रात और दिन के 24 घंटे, और 24 बार करना। नींद, नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में भराओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Srdnej. Dohar Shaktipi. Har Sabe. Hasr Hasur. Nahi kar sakti.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Mata.

अकेले भी बन जाए।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Is that

dame pap que sana.

0: किस्सा घर में आ जाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो, स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी सभी बच्चों

Yeah.

सकता है, कभी कभी हो जाएंगे।

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: स्थितियों के बीच में

0: busy practice. So you have me.
1: Van a combotir.

ब्रह्मा मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में हूं। इस मास्टर शक्ति

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर हिम्मत नहीं भी हो तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। समझा समझा समझा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी हो, आपका काम है परों तक पहुंचाना, पहुंचाया अर्थात दिल से निकाला, आपकी जिम्मेवारी पूरी। अगर आप समझते हो कि कुछ हो नहीं रहा है, तो आपका इसमें पाप नहीं बनेगा, जो जिम्मेवार है वो ढोका बनेगा। आप निश्चिंत
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे। पक्का है ना? साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला नहीं छोड़ के चले जाना। अकेला तो नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो, पापा मेरा पापा, पापा हसर आपकी समस्या को हल कर देंगे। दिल से बोलना, पापा ये बात है, पापा ये करो, पापा ये, पाप बंधा हुआ है। लेकिन दिल से मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सब दादियों को देखे खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है।
2: साक्षात्कार होना है।
1: कुर्सी पर आ गए हमको उठाने के लिए।
2: उसको उठाने के लिए
1: एक दो को देखो फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है, दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभ कामना। तो स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में ताता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो। ओ मां गुस्सा के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना, दादियाँ स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे थे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देखा है कि क्रोध के सब्जेक्ट में बहुत कम पास ऐसी समझती है, शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं। लेकिन क्रोध क्या नहीं तो आत्मा के लिए स्वरूप, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा अंदर में होती है, उसके it.

0: रूप भी है। वो चतुराई का रूप है, क्रोध की चतुराई का रूप है। वो क्या है? कहने में, समझने में, ऐसी समझती है, वह कहती है कि कहां कहां सीरियस होना ही पड़ता है, कहां कहां ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी भी सच्चे दिल के सने में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। Man.

Yep.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक गलती बहुत करते हो, इसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर टाइम लगता है बहुत। समझती है कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से एक कल की बात परी हो जाती है। तो कहती है कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया फिटिंग कर लेंगे। ये son ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार, तो ये मेरा शब्द ये ही सोना संभाल के या हीरा

0: dich bei dir. Mira Sanskar. Jai. Jo Babka Sanskar. Vishish Hai. Vishwa Kalyan.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो, परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद, परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता समय की कंट्रोल।

0: Určitě už tě tam. कभी कभी नटखट होके रोस भी जाते हो, रोसते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रोसे हुए को भी मनाते आते, कोई बात नहीं बच्चे आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत जाओ, भूल जाओ बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी। तो हर दिन चिड़िया किसके साथ है? बाप दादा के साथ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाइए ना, बाप दादा खुश है। लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और जाए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सके। अभी कर ली सो कर ली, उस समय

0: Constant. Bob Tata. Bar Badish Aratira. Ki Achanak Hona Hai. Aur Aisi Circumstance Mein Hona Hai. इसीलिए पाप को लेना कोई नहीं थे कि आपने बताया नहीं बार बार बिना बिना इशारे देते सेवा का फल मिलता है सेवा की मार्स क्योंकि चार सब्जेक्ट है ना तो सेवा की सब्जेक्ट मार्क्स मिलेंगी लेकिन और तीन सब्जेक्ट अगर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और तीन में कम ली तो नंबर क्या मिलेगा चार ही में फर्स्ट नंबर आना चाहिए ये बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आश
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जय डॉलर को, जय पाउंड को, है तो पेपर ही। तो पेपर का तो चलेगा, सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? डाउन मनी डाउन तो होनी है, और अब कीमत सबसे ज्यादा है मूल्यवान। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओमंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था, एक तो समर्पण हुए ब्रह्मा बाप के साथ और अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होंगे, फिर आपको अखबार में नहीं के पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे टीवी में, दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Thank you.

टेस्ट भी आते हैं, समाचार तो अच्छे हैं। संसार समाचार जैसे अच्छे लगते हैं तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा।

समाधि। कटने किया लेकिन अंदर तो सुन ली माना समाधि, तो बात सच्ची भी है। समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता है, कोई सच।

दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सुनते। अच्छा सुना, कर कुछ नहीं सुनते तो समाचार कहाँ जाएगा? बुद्धि में तो गया ना, श्रीमत में पारम मत मिक्स क्योंकि जो बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? और उसकी आदत डाली मानो एक बार ही आपको समाचार सुने, आपको भी बहुत अच्छा लगा। नहीं बात ऐसा भी होता है, ये पता तो पल गया, लेकिन एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा, आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आके सुने। क्यों? कि आपने सुना, वाह, तो उसको समझा। तो ऐसी बातों से उसको भी मुक्त कर। सुन करके इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन अगर सुनते हैं तो कर सकते हो कुछ तो करो। सुनो, या इतनी ताकत है आप में जो उसको सदा के लिए वो स्टॉप लगा, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगा। बिल्कुल उस व्यक्ति से दृष्टि से समाचार सुनने वाली संकल्प गिरना भाव कर। इतनी पावर है आप में, तो सुनना नहीं हुआ उसका कल्याण करना, लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी। थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा होते होते एक घृणा भाव या चाल चलन में
웃었어.

0: sono anni e mesi paura degli altri. E credo che termini di creare, che è trovato calente. sofoca. Tu e picane in barino lampi. Impatta da to. Sapki. Del chi pate in su. Yeah. चीज़ तो दी है, जिम्मेवारी भले उठाओ लेकिन पहले ये चेक करो किसी घर में बिंद लगती है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे, जीवन में रहते पुरानी दुनिया में रहते तमोगुणी वायुमंडल में रहते ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्याय मुक्त हो कमल पुष्प समान न्याय मुक्त आत्माए दुख से चिंताओं से अशांति से मुक्त हो जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल प्राप्ति चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प का काम है आना और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त न्यारी और बाप की प्यारी रहना। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी इसमें तो बात कि सबके दिल में बाबा की याद है, कभी भूल भी जाती है कोई हिसाब किताब के कार, लेकिन मैं जा रही थी थोड़ा भूल।

0: del mejor. Mire, Pachi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगा, जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आता है, डरने देते हो, फौरन उड़ा देते कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर पले आओ, कोई भी समस्या क्या है, मच्छर और मक्खी तो है, फौरन भगाओ, उनों का काम है आना, माया आने का काम नहीं छोड़ती, लेकिन भ्रमण भगाने के काम में कभी कभी थोड़ी देरी लगा देते, माया भी सुन रही है। तो ये जगत जीत बनेंगे।

0: आप याद करो मेरा काम भगाना है, वो भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी, आप विजय पाना नहीं छोड़ो। तो क्या अभी छोटे छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना? स्थिति के आगे ये छोटी छोटी चीजें क्या है?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Christine.

Shit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जय विदेश जी, जय भारत वंश, है तो दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। श्रफ इमर्ज करो, हिम्मत समय हुई, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना पांडव है। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं, अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नास है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक वार का विजयी, एक बार नहीं अनेक बार की विजयी आत्माएं। पीछे वाले बच्चे विजयी हो, हाँ विजयी हो, हाँ ये कुर्सी वाले बच्चे कुर्सी पर बैठे हो, अच्छे
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हो ना, ऐसे

जैसे आपके टॉप की स्टेज सबसे टॉप की है, परम धाम बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आके बैठ जाओ, जैसे थक जाती है ना तो 5 मिनट भी का शांति से बैठ जाती है तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे बीच बीच में बाप के साथ आके बैठ जाओ, और दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्कर को देखो। सृष्टि चक्कर में टॉप स्थान कौन सा है? संगम बारह की सुई टॉप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए सेवा की फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। समझा क्या कर रहे हैं? समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हैं? रचता कौन? Awesome.

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज की बात व्यर्थ संकल्प के समापति की भूल नहीं जाना, बाप दादा के पास रिकॉर्ड तो पहुंच ही जाते, तो बाप दादा देखेंगे कितने तीव्र पुरुषार्थी बच्चे और एक दो को भी उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं ये भी खत्म करो, उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो, ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई सेंटर पर कभी भी कोई एक दो के प्रत कोई भी और भावना नहीं, शुभ भावना शुभ कामना, ठीक है ना? बहुत अच्छा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बात का था एक बात का सिमटती दिला रहा है कि कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारियों मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं हो। बड़ी दिल वाले बनो, बाप की दिल कितनी है, छोटी है। जब बाप बड़ी दिल वाले हैं तो बच्चे छोटी दिल कर देते हैं, बीमार हो के तो रोना शुरू कर दे, दर्द हो गया दर्द हो गया, तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी के बारे जी, जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब तो दिल शिकस्त से बीमारी को मरा देते, इसलिए हिम्मत वाले बन तो बाप भी मददगार बने, ऐसे नहीं रो रहे हैं क्या करूं क्या करूं, और फिर सोचो बाबा तो मदद ही है, मदद उसको मिलती है जो हिम्मत। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद, तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करते ही नहीं, तो आती अक्षर याद नहीं करो बाबा मददगार है, लेकिन किसका, तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करते ही नहीं, हमको तो देखते ही नहीं। पहले आप शिकस्त नहीं मन और मन में अगर सारी उलझन आ भी जाती है तो क्या होता है? ऐसे समय पर धैर्य शक्ति रोट

0: काम से थक करके बैठ जाओ और कहो पापा दाल रोटी खिलाएं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो। शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

पावरफुल होना चाहिए।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो शब्द साथी और साकी, जब बाप दादा साथ है तो साकी बन की सीट सदा मजबूत रहती, कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। साथ है लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते, किनारे कर देते, जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पर जाता है या कोई ऐसी बात होती है ना, तो साथ का भी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते ऐसे। साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो, कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कहेगा कोई, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है, हर एक कहते हैं मेरे साथ है, मेरा साथी है ना, ऐसे मन से कहते हो या मुख से, मन से कहते हो, पीछे वाले मन से कहते हो, हाथ अच्छा उठाते हो, हाथ हाथ हिलाती है माना हाजी, बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठी है और अपने परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाती है जो देखती नहीं है कि साथ में कौन है। बाप भी क्या करते, बाप भी साखी हो जाते, साथी से साखी बन के खेल देखते, ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो, बाप को अच्छा नहीं लगता। तो साखी पन का तख्त चोरो नहीं, जो जो अलग अलग बुशारत करती हो ना उसमें थक जाती हूँ। आज मन सागा किया, कल वाचा का किया, समान संपर्क का किया, थक जाते हो। एक ही बुशारत करो साखी का तख्त नहीं छोड़ना और कुछ ने मां तख्त नशी साखी बन के तख्त नशी आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर तख्त नशीन हो। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेंगे, नीचे तभी रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। और तब कोई को भी दबा दो तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना अंदर ही अंदर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है, लेकिन किसके किसके मददगार जो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही शरद दे रही है कि समय के समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता की निशानी सारे दिन में ये भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अपमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अपमान में आते हैं तो ये भी व्यर्थ संकल्प

0: अब नहीं हो, मैं भी सब जानता हूं। ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, उज्जैन। ये मेरे पन का अपमान का संकल्प, ये भी सुख्यम अपवित्रता का अंश। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गए, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया के स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो, तो जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सुनने चाहते अभी।

0: 真笨哦。
1: Eso.

Summer.

जीवन मुक्त, ब्रह्मांड जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्रह्मांड श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष वर्ष इसलिए ये बंधन है, समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना। क्यों समय की हालत को देख चार का बोर कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है। श्रेष्ठाचार का

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है। अपने से ही प्रॉमिस भी बहुत करते, अब नहीं करेंगे, लेकिन कारण क्या होता है? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है। बीच बीच में अल्लबेलापन आ जाता।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो वक्त भी थोड़ा कम हो जाता।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कहीं कहते हैं ज्ञान योग ज्ञान बस बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छा है ज्ञान, अच्छा है कहेंगे ज्ञान यूज करते हो Yeah।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की ना, तो विघ्न कितने आए और आपको कुछ हुआ तो बाप दादा छत्र छाया बनाता, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया मुखी देता है, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारिया अटल रहे तो प्रैक्टिकल में बेघरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय बिना मिलना विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया रही था, रही ना, कोई नुकसान हुआ दुनिया वाले हंगामे में डर करके सब छोड़ करके भाग गए। जब पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ, सब भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट पर गया समाज, पर गया सब, सभी डर के मारे जो अच्छी चीज लगती थी ना वो छोड़े कैसे, प्यार होता है ना उसे, तो जो सिंधी लोग एंटी थे आपने जो उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया, जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना वो हाथ जोड़ करके देखे गए, तो आप यूज करो। और दुनिया वालों को हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सारा बैल काटी सब्जियों की थी, 5 रुपए में सब्जियां, आई चत्र जाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
2: रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा, रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा, सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी बाबा बाबा कहती, दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते, तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, समझे? बचाओ समय को, संकल्प को, जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कलंब उसी परमान राज भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। लेकिन एक अटेंशन रखना, ये अगर मानो आपका आज का दिन जमा खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त हो जाएंगे ना। ओके, दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो के अभी भी हमको चांस है जमा करें, अपने को उमंग उत्साह मिलाओ, अपने आप से रेस करो दूसरे से, अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा

Harry Potter.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सभी अनुभवी के पाप का निर्स्वार्थ अवनाशी सने हर एक बच्चे को सने

c'est mort.

Sete.

सुनैया

What's

0: Raibana neva liot. Kyo? Kisane? Me praptya? Sapasht anbhavati. Archa?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की तो रायल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। स्लोगन तो आपका बहुत अच्छा सबको लगता है, आप बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है बदलना। पुराना स्लोगन है ये तो, नए नए रूप रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। आप अपना ध्यान रिलैक्स कर, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है। और भी रायल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत आ रहा है समीप, उतना वो नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी, फिर आपके पाँव में झुके। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, फिर खुद झुक जाएंगे। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, शुभ भावना बिट नहीं जाए। कभी भी कोई दुख दे, आप चैलेंज करते हो। हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को पाप समान
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को आर्डर कर सकते हो, कर सकते। Yes.

Sorry.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर कोई नैन अंदर में समझे, हाथ उठाने में शर्म आवे, तो भी अगर कोई विघ्न है या कोई अड़चन है, तो अपने दादियों को या जिसमें भी आपका फेथ हो, बड़े दादी या दादियों में, उनको सुना देना, रखना नहीं अंदर, कोई ना कोई इलाज ले लेना। क्यों होना है तो अचानक होगा, उस समय पुरुषार्थ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते है ना वो ऐसे होते है जैसे पता नहीं कहाँ गायब है, देख भी रही है लेकिन गायब, बोल भी रही है लेकिन गायब रूप में बोल रही है, वो चेहरा अच्छा नहीं, चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, सीरियस नहीं चेहरा करना, क्या करे कैसे करे तो सीरियस हो जाते हो, बहुत मेहनत है बहुत काम है सीरियस हो जाते हो, लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा है मुस्कुराना, मुस्कुराना आता है ना, आता है, आपके चलचित्र देखो कभी ऐसे सीरियस दिखाते है क्या, अगर सीरियस दिखावे ना तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है, अगर आप भी सीरियस रहते हो ना तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जीवन वाला हूं, जीवन नेचुरल और सदा काल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनाओ जो लक्ष्य योगी जीवन का, जो लक्ष्य अनुभवी मूर्त बनने का, वो लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो। स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या

0: जो सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीन बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीनों बातें अगर कोई भी समय दुनिया के हालतों में भी, दुनिया की हालत कैसी भी हो, लेकिन तीन ही बातें हैं, तो आप सबको दाल रोटी बाप दिलाएगा। दो चार सब्जी नहीं दिलाएगा, दाल रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।
1: सामग्री सब छोटी हो जाती।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर बाप समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता। अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी बाप दादा ने चोटरल बताई थी, याद है? पांच पांच मिनट सारे दिन में एक बार ड्रिल करनी है, वो की है जिसने वो ड्रिल की है, वो हाथ उठाओ। की है, की है, दोनों ने हाथ उठाए। क्यों? तो थोड़ा टाइम और टाइम नहीं किया, तो अभी क्या करेंगे? कम से कम बताएं, कम से कम बताएं, आज कम से कम आठ बारी सारे दिन में कर सकते हो, कर सकते हो। तो इस वर्ष का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क दूसरी सीजन तक कम से कम आठ बारी ये ड्रिल जरूर करनी है, जरूर। देखेंगे नहीं, चाहे मिस हो जाए तो एक घंटे में अनेक बार करके पूरा करना, नींद पीछे करना, सोना पीछे। पहले ड्रिल आठ बारी पूरा करके पीछे सोना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

अशुद्ध संकल्प कम चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए। क्यों संगम योग का

0: अटेंशन दे, सफल कर सफलता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वचन क्या बहुत अच्छी अच्छी मत किया क्या हम अब से अवश्य आएंगे पौधों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रोल ध्यान में भी पौधों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का समाचार दिया। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। 9 वर्ष के नए उमंग बहुत अच्छी अच्छी लिखी है, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा यही ऐसे बच्चों को वरदान देती है, इसी हिम्मत नशे में अमर भवन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: Scorpy. Bob Dada. Şehzade. Sadıcıl. Rehrecel. Piçe piçe. Nairece.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: विश्व परिवर्तन करना है ना, क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके चरचित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना, मत्तर पे जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना, चर्चित्र लास्ट चर्च।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्रह्मांड सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, योग बाप को सब प्रकार के संकल्प वा जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का भोज वो दे दिया है ना, भोज दिया है या थोड़ा सा रह गए, क्योंकि थोड़ा भी भोज फरिश्ता बनने नहीं देंगे। और जब पाप आई है बच्चों का बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वो हाथ उठाओ, दे दिया है देखना सोच के हाथ उठाना, बोझ दे दिया है, दे दिया है। अच्छा दे दिया, मुबारक हो, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वो किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, बोझ लेने के लिए बाप आए, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं, बोझ उठाते उठाते बच्चे सभी

stata nicchiatica, che cai pacioco e sporane sansar che accrescia caboi porane samant che piaccia caboi leken porane sanskar os caboj mejare ti merawe to aaj bab dada सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर तो का देता भी है और अंत में भी तो का देने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में दीवार पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन दीवार पुरुषार्थी कारण दीवार पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं जलाया भी, ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करती है। थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए संस्कार, पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये सब साधन आप बच्चों के सेवा के सहयोग के लिए निकले। ब्रह्मा बाप जब समाचार सुनते हैं, ये ईमेल है, ये है, खुश होते हैं कि वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास खुश होते। सब सेवा का साधन समझ के यूज करना, सेवा के लिए साधन, क्योंकि विश्व कल्याण करना है तो ये भी साधन सहयोग देते। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले। हाथ में भी कोई साधन नहीं थे इतने, और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए सेवा बढ़ाने के लिए, लेकिन साधन है साधना करने वाले आप। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो, बाकी बाप दादा खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों के फटाफट कर रही है। बाप दादा आपके ऑफिस काफी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बहुत बिजी रहती है, ये हंसती है, अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के बिना का। सेकंड भी निकालो, अभी साधन पर हाथ है, और अभी अभी एक सेकंड साधना बीच बीच में अभ्यास करो। जैसे साधनों में जितनी प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, ऐसे एक सेकंड में साधना का भी अभ्यास हो। ऐसे नहीं।

tatapan ini cucai wakas adenjen kame jesi wadenjen ketiona tas menit me ye leta pura karna isi lebi siyo tiona tanke karan ese hisocho tas menit me ye kam karna he wabi to bana tiona timetable isme ek to menit से ऐड कर दो 8 मिनट लगता है 6 मिनट नहीं 8 मिनट लगना है तो 2 मिनट साधना में लगा ये हो सकता है इससे पूछते हैं गायत्री से हो सकता है अभी कभी नहीं कहना बहुत बिजी बाप दादा चेहरा भी देखते हैं उस समय फोटो निकालने वाला होता है कितना भी बिजी हो लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो होता क्या है सेवा तो बहुत अच्छी करते हो समय भी लगाते हो उसकी तो मुबारक है लेकिन स्व उन्नति या साधना बीच बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है उठी भी तकती है हाथ पांव भी तकता है और बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो तो जो थकावट है ना वो दूर हो जाए खुशी होती है ना खुशी में कभी थकावट नहीं हो काम में लग जाते हो बाप दादा तो कहते हैं कि काफी समय एक्शन कॉन्शियस रहते हो होता है ना ऐसे एक्शन कॉन्शियस की मार तो मिलती है वेस्ट तो नहीं जाता

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते हैं। सब टीचर्स दिल्ली वालों का पीछे देखो, कितने टीचर्स 14 साल तो टीचर्स है।
2: 2000 टीचर्स आई है, 21,000 भाई बहने आए हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: खुश होते हैं।

पापा मिस टीचर्स को

big teacher. Genesis. Say it.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक वाणी, दूसरा स्वर, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूप।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

でした。

Ciao.

hated me.

Ciebie.

विश्वसेवको सारा दिन वाणी द्वारा जैसे

Nossa.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के गर्भों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं, जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराते, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रही, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे हैं किस में मेरे कोई नुकसान है, समझा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Master.

हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा, कर सकते हो ना? अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना, करो नहीं, लेकिन कर सकते हो। ऐसे Yeah.

0: замечай. И как роде, отча роде, халчал мене яе, иске упар, और अटेंशन.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। जय सुन।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Peace.

संस्कार से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी वर्तमान समय के हिसाब से

Ganz gut.

0: इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सवाली करेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Snap, diddle, say.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

इस कभी

0: Kuş nema, kuş nasip. Dikhai de, cheri se, chalan se. इसके लिए बाप दादा चाहते हैं कि अभी से लक्ष्य रखो, जैसे अभी ये 75 वर्ष के कारण सबको मांग
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बेफिक्र बच्चे,
2: बेफिक्र
1: बाप दादा,
2: बाप दादा
1: सदा ही बेफिक्र बच्चे।
3: बेफिक्र बैठ,
1: कारण क्या है? बेफिक्र क्यों है?
2: कल क्या है, ये फिक्र क्यों है?
1: दिल बड़ी है,
2: दिल बड़ी है।
3: बेफिक्र क्यों है? क्योंकि दिल बड़ी है।
1: जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता है।
3: तो दिल बड़ी कैसे हुई है?
4: बड़ा बाबा, भरी दिल, बड़ा परिवार।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: संगम युग श्रेष्ठ है वो, ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन ये रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुखमय बना दे, ये उमंग नहीं आता दुख देखने जाए थे दूसरों का दुख देख करके भी। आपके भाई है, आपके बहने दुख देखना अच्छा लगता है, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमार्ज करो, सब सेवा में लग नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया चलो वर्ष पूरा हुआ अभी।

0: adesso mamma tocci mi kam nahi hai chasa dwaraj brahma bab ko avyakto debi te tis varaj hoge brahma bab ko kab ke debi kab bachi hai दरवाजा खोलने के लिए तो घर का दरवाजा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे इंतजार कर रहा तो सेवा में एडिशन करो इससे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Really?

अर्थात पवित्र मंदिर। पवित्र बने हैं ना, पवित्रता का व्रत सभी ने लिए है ना, पका नंबर वार भले है, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात पवित्रता।

जानते हो कि पवित्र तो आप बनते हो, लेकिन आप संघ के रंग में डबल पवित्र बनते हो। पवित्र चक्कर घूमो द्वापुर से आए। द्वापुर से अब तक देखो कोई डबल पवित्र बना है? तो क्यों आप डबल पवित्र महान बने हैं? क्यों आपको रंग कौन सा लगा? परमात्मा के संग का रंग। तो जैसे परम आत्मा पवित्र, लेकिन वो भी डबल पवित्र नहीं। आपका भाग्य है क्योंकि आप रहते ही परमात्मा के संग में हो। संग का रंग इतना पक्का रहता है जो डबल पवित्र बन जाए।

जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ जलाया

योग के अभ्यास करते हुए

जैसे जाओ वैसे अभी अभी

Mira.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शिवा जो स्वयं को वा दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, वो स्वार्थ है सेवा नहीं। और नीचे ऊपर होती है निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं होता है। तब सेवा में डिस्टर्बन होती, सभी एकदम न्यारी और प्यारी बन करती, स्वार्थ से न्यारी और सर्व के संबंध में प्यारे, चारों और अटेंशन प्लीज।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sí.

separarse.

Sis.

Sim.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। सो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

சத்யம் சிவம் சுந்தரம் சத்யம் சிவம் சுந்தரம்.

याद करने वाले बच्चे वाह बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा सभी के मन में

Dick.

खुशी की जल स्पष्ट दिखाई दे रही, पाप भी दिल में और पाप भी यही हर एक के चेहरे से देख रहा है और दिल से कह रहे हैं जो दिल

Pap Kajekit, Papa, Pachoka Bijekit, Papa, Arar Kishikil Be, Papa, Kitchen. स्पष्ट दिखाई दे रहे, कोई गीत के रूप में, कोई दिल की आवाज के रूप में, ये नैनो द्वारा अपने

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Rico.

Freakers.

बस एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्म।

0: जीवन कितने कोष्टमा बन जाती।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

कल्याण होना असंभव।

क्यों बना साकार पाठ परिवर्तन।

0: नहीं धारण करता तो आप इतनी अल्प में यहां पहुंच नहीं पाते क्यों? इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों छोटी बातें।

qué tal para

0: give tomato.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सभी है, लेकिन मेरा जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते मेरे बच्चे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

очи.

じゃ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।